0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: क्या तुम उसे प्यार नहीं करती?
2: नहीं करती।
1: क्यों नहीं करती?
2: मैं प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती।
1: क्या तुमको प्यार करना नहीं आता?
2: नहीं आता।
1: नहीं
2: नहीं। हाँ नहीं।
1: तेरी कसम। प्यार सिखा दूँ?